0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Ek prarambhik balyavastha shikshak ya prashikshak ke roop mein aap bachchon ke jeevan ko aakar de sakte hain. Aap apna career bana sakte hain. अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
3: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जाने। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता। डाइवर्सिबिलिटीज इसे बदल रहा है। एक निःशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं, जानकारी, कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं। इस महीने निःशुल्क जुड़े और $50 का वेस्टफील्ड वाउचर जीतने का मौका पाए। डाइवर्सिबिलिटीज हम सभी के लिए 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: अपने सपनों का घर बनाएं रिवर वॉक में, जो है डेवलपमेंट विक्टोरिया का एक प्रोजेक्ट। वैरोवी के दिल में स्थित इस जीवंत और स्थापित कम्युनिटी का हिस्सा बने। शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और पार्कलैंड के पास आपका नया घर। रिवर वॉक प्राइमरी स्कूल और एस्पायर अर्ली एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से सिर्फ पैदल दूरी पर है। यहाँ अलग अलग प्लॉट साइज उपलब्ध है, केवल 5% डिपॉजिट के साथ खरीदे। अधिक जानकारी और अपनी रुचि दर्ज करने के लिए आज ही विजिट करें myriverwalk.com.au।
3: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहां देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
6: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा। 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों, दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है। अधिक जानकारी के लिए www.3zzzindian.org। आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से।
7: गीतांजलि के सभी श्रोताओं को राजीव अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। जन्माष्टमी के अवसर पर हमारी ओर से आपको, आपके परिवार और आपके मित्रों को

कहिए क्या हाल है। आइए सुनिए मेलबर्न मालव, अगस्त का महीना अभी अभी बीता है और सितंबर शुरू हो रहा है। और अगस्त का महीना वो महीना होता है जब त्योहारों का बांध खुलता है और शुरू हो जाती है लगभग 2 महीने तक चलने वाली त्योहारों की लड़ी। इस बार अगस्त में स्वतंत्रता दिवस, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न और वेदांत सेंटर में स्वामी स्वरूपानंद जी के विशेष उपदेश और कई ही ऐसे प्रमुख समारोह हुए। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वामी स्वरूपानंद जी से एक वार्तालाप, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आई प्रमुख गायिका गीतिका गांधी और निर्देशक रीना दास से मेरी और पल्लवी सराफ की वार्ता। आप जानते ही हैं पल्लवी सराफ हमारे साथ की ब्रॉडकास्टर हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए सुनते हैं ये गीत श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत, ये कृष्ण भजन जन्माष्टमी के अवसर पर।

जब मैं थी तब हरी नहीं, जब हरी है मैं नाही। प्रभु से प्रेम और भक्ति की राह पर प्रभु में तल्लीन होकर ही शांति और संतोष मिलते हैं।

आइए बातचीत के इस दूसरे हिस्से में अब ये देखते हैं कि क्या कोई मशीन चेतन हो सकती है, क्या कोई मशीन कॉन्शियस हो सकती है और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो स्वामी सर्वप्रियानंद जी से बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या यह सीखने में मदद करती है या सीखने को भीतर से खोखला कर देती है? चेतना के बारे में यानी कि कॉन्शियसनेस के बारे में वेदांत का क्या कहना है? और खुद मशीनों से पूछिए तो वो नहीं क्यों नहीं कहती हैं? उनका जवाब आधारित है अनिल सेठ के उस निबंध पर जिसे इस साल बर्गरुवन पुरस्कार मिला, द माइथोलॉजी ऑफ कॉन्शियस एआई, और श्री रामकृष्ण मिशन के शिक्षाओं पर। स्वामी जी सिर्फ वेदांत और स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान से ही नहीं लदे हुए बल्कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट्स में के डिस्कशंस में भी इनको ये पूरा भाग लेते हैं और इन्हें पूरी जानकारी रहती है। तो आइए सुनते हैं वार्तालाप का ये दूसरा भाग।

0: और आइए अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के माहौल में। आइए सबसे पहले एक डेंटिस्ट से मिलते हैं। ये डेंटिस्ट आपके लिए बहुत एक खूबसूरत गाना पेश कर रही हैं। आप समझेंगे ये क्या बात हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकिता गांधी की, जिन्होंने अपनी पहले प्रोफेशनल जर्नी शुरू की एक डेंटिस्ट के रूप में। फिर उन्हें संगीत की दुनिया में कैसे पहुंचने का मौका मिला, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। आइए पहले सुनिए ये गीत उनकी आवाज में।
1: तन लड़े तो तन मुक जाए, रूह जुड़े तो जुड़ी रह जाए।

0: असम का एक छोटा सा गांव, एक लड़की जो मुंबई आई थी अभिनेत्री बनने और जिसे उन्हीं के शब्दों में अभिनय में कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। न कोई फिल्म स्कूल, न किसी के साथ असिस्टेंट का काम, बस एक कैमरा जो उन्होंने खुद खरीदा क्योंकि क्राउड फंडिंग के लिए किसी से पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। 3 साल मैदान में ज्यादातर काम अपने ही हाथों से और साउंड में मदद की अपनी कजिन ने। उस फिल्म का नाम था विलेज रॉकस्टार्स। आज हमारे साथ है रीमा दास। उनकी हर फिल्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में दिखाई गई है और यह 5वीं है, नॉट अ हीरो। इस साल फरवरी में बर्लिन में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जहां बच्चों की जूरी ने इसे क्रिस्टल बेयर स्पेशल मेंशन दिया। कहानी है 11 साल के मेवान की। शहर में पला बढ़ा एक लड़का जिसे उसके पुश्तैनी गांव भेज दिया जाता है। वो कहती है कि उन्हें तकनीक की समझ थी ही नहीं, वो फिल्म को एक पेंटिंग की तरह देखती थी, बहुत मासूमियत से। शायद बात यही है, कहानी कहने की जो बेचैनी होती है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। सुनिए राजीव अरोड़ा और पल्लवी सराफ की बातचीत रीमा दास के साथ।
1: Film, sir. All of my films are played here. This is my 5th film going to be screened, so it's a wonderful feeling.
2: उस चीज को सीखने में आपको कितना टाइम लगा उसमें, क्योंकि हर एक डायमेंशन को सीखने में और उसकी इस लेवल पे आने में क्योंकि उसमें आप अपने को आपको एक्सप्रेस कर सको, इट टेक्स टाइम। तो व्हाट वाज योर जर्नी लाइक दैट उस टाइम?
1: एक्चुअली आई केम टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर, तो मुझे तो शुरू से एक्टर बनना था। एंड जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, एक छोटी सी गांव है असम के, तो वहाँ पे तो फिल्में बनाना है ऐसा कोई ड्रीम ही नहीं था। इट वॉज नेवर माई ड्रीम, बट आई यूज टू लव डांसिंग एक्टिंग। तो इसकी वजह से मैं पढ़ाई ख़त्म किया, तो मैं बॉम्बे में एक्चुअली एक्टिंग करने आई थी। तो उसी दौरान मुझे फिल्में देखने मिली। तो बॉलीवुड जो कॉमर्शियल स्पेस है वो मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब आई कुडंट इवन इमेजिन टू मेक ए बॉलीवुड फिल्म बिकॉज इट्स टू बिग फॉर मी एंड आई डिडंट नो हाउ टू डू इट एंड आई वाज नॉट डूइंग वेल एज एन एक्टर। Somehow I was lost and then I started, I got opportunity to watch world cinema. जब मैं फिल्म देखने लगी तो कहीं ना कहीं एक शायद छुपा हुआ रहता है, इसके लिए मैं ये कर्मा के ऊपर बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ। तो जब ये सब फिल्में मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा तब एक इंटरेस्ट आने लगा, छोटी सी फिल्म बनाई तो उसको भी लोगों ने सराहा, उससे आगे बढ़ी। देन आई बॉट ए कैमरा 5D Mark, उससे मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड आई डिडंट हैव दैट करेज, इवन क्राउड फंडिंग के लिए वीडियो बनाती थी लेकिन मैं डिलीट नहीं, मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई बिकॉज मुझे लगा था पता नहीं क्या बनाऊंगी दूसरे के पैसा लेके। तो वो जो कैमरा मैंने खरीदा था उसने काफ़ी हेल्प किया। तो मैं कोई फिल्म स्कूल नहीं गई थी, किसी को असिस्ट नहीं किया था। तो स्पेशली विलेज रॉक्सर्स का जो टाइमिंग रहा 3 साल, तो ऑन फिल्म मेरा वो लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड माई सेल्फ। मेरी एक कज़िन है मल्लिका, उसने साउंड करने में हेल्प किया। तो वैसे ही हमने 3 साल जो फिल्म में काम किया प्रैक्टिकली, आई वॉज लाइक स्टूडेंट, आई वॉज क्यूरियस, आई वॉज मोटिवेटेड टू क्रिएट समथिंग एंड आई वॉज ऑल्सो आई थिंक क्वाइट लुक्ड एट इट फ्रॉम अ वेरी इनोसेंट, innocently I was looking at it. It was more like a painting, क्योंकि मुझे इतना technicalities फिल्म का कुछ इतना ज्यादा पता नहीं था। तो
2: लेकिन बनाने में तो technicality लगती है ना?
1: लगती है, लेकिन बहुत minimal मुझे basic आता था, मुझे बहुत कुछ नहीं आता था। जो मैंने फिल्म देख के जो थोड़ा सा समझा और मेरा जो intuition है, ज्यादातर मैंने अपना intuition को follow किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पहली, आई मीन द फर्स्ट फिल्म वो मेड और द फर्स्ट वो आई मीन लाइक एनी आर्ट फॉर्म, किसी ने गाना गाना गाए थे तो ऐसा नहीं कि पहला जो लोग भी कुछ करते थे उनको हमेशा ट्रेनिंग मिलता था, कहीं ना कहीं अंदर से अंदर कुछ होता है
2: वो स्टोरी टेलिंग की जो अर्ज होती है, इट फाइंड्स इट फाइंड्स इट्स वे, एंड इट फाइंड्स द राइट मीडियम टू एक्सप्रेस इटसेल्फ.
1: आई थिंक दिस इज द राइट मीडियम. आई हैव बीन डूइंग इट लास्ट 10 इयर्स एंड मोर देन 10 इयर्स नाउ.
2: ऐसा भी देखने में आता है कि आजकल सो कॉल्ड फेमिनिस्ट सिनेमा काफी हो गया है, वो होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक मेल डायरेक्टर फीमेल स्टोरीज आसानी से बता पाता है एंड वॉइस ही वर्षा. अब हम जिंदगी जीते हैं और जैसे जैसे हमारी जिंदगी बीतती है हमें ये पता चलता है कि मेल या फीमेल होने में ही दुनिया का पर्सपेक्टिव बदल जाता है. द वर्ल्ड ऑफ मेन इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ वुमेन. दे मीट समवेयर बट दे आर नॉट द सेम. सो उस हिसाब से वैसे तो जो स्टोरी टेलर है उसको जैसी भी कहानी है उसमें लपेट लेना चाहिए, उसके हिसाब से हो जाना चाहिए. तो आपकी उस बारे में क्या राय है? इज इट
1: एक्चुअली आप जो आप फीमेल और मेल की बात कर रहे हो हार्मोन ही डिफरेंट है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस. हार्मोन डिफरेंट है तो आप उस हिसाब से ही बिहेव करोगे जानोगे, लेकिन उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं. आपका अपब्रिंगिंग, हाउ यू फील, आपका सेंसिटिविटी, वो सब मैटर करते हैं. ऐसा नहीं कि मेल डायरेक्टर ने कभी भी अच्छी एक वुमेन फिल्म बनाया नहीं, वुमेन सेंट्रिक बनाया है. जितना आप जानने के लिए कोशिश करेंगे, फील करने के लिए कोशिश करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, आप बना सकते हैं. और व्हेन आई एम मेकिंग मूवीज इट्स लाइक आई एम गिविंग डेफिनेटली इम्पोर्टेंस टू फीमेल कैरेक्टर्स, बिकॉज उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है. ऑलवेज आई फील लाइक लिमिटेड
2: ऑथेंटिसिटी भी है,
1: यही बात है. बट अभी ये नौते हीरो मैंने बनाया है, वहाँ पे मेरा मेन प्रोटैगनिस्ट मेल है, अ बॉय. देन टोरा सिजन बनाया था, उसमें भी यू नो देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग मेल प्रोटैगनिस्ट. सो आई बिलीव लाइक कि मेरा अंडरस्टैंडिंग से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल और वुमेन और मैन, इट डजंट मैटर. इट मैटर्स लाइक आप कितना सेंसिटिव होके अंडरस्टैंड करके उनको बता रहे हैं. इट इज दैट इज व्हाट आई लुक एट.

0: कलकत्ता की गलियों से चेन्नई के एक म्यूजिक स्कूल तक और वहां से बॉम्बे के रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक कुछ सफर प्लान करके नहीं होते, बस हो जाते हैं। निकिता गांधी पेशे से डेंटिस्ट है। जी हां, डेंटिस्ट। चेन्नई में डेंटिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उन्होंने शाम की क्लासों में एआर रहमान साहब के म्यूजिक स्कूल में दाखिला ले लिया, सिर्फ इसलिए कि संगीत छूट ना जाए। एक ऑडिशन हुआ, रहमान साहब ने वो आवाज सुनी और उन्हें फिल्मों के लिए बुला लिया। फिर बॉम्बे, जहां वो असल में एक दोस्त की मदद करने गई थी, और प्रीतम दा के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ उनका पहला हिंदी गाना राब्ता। उसके बाद काफिराना, उल्लू का पट्टा, बुर्ज खलीफा, नाच मेरी रानी, बादशाह के साथ जुगनू, और हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मलयालम। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के लिए वो पहली बार मेलबर्न आई हैं। इस बातचीत में उन्होंने अपने सफर की बात की, अपनी पसंदीदा आवाजों की, रेखा भारद्वाज और आबिदा परवीन से लेकर एला फिट्ज़ेरल्ड और एडल तक, और आखिर में बिल्कुल बिना किसी तैयारी के हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुना भी दिया। सुनिए पल्लवी सराफ और राजीव अरोड़ा की बातचीत निकिता गांधी के साथ।
1: वेलकम टू मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया।
2: थैंक यू।
1: तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
2: बहुत अमेजिंग साहब। वेदर के लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं, बट मैं, मुझे तो विंटर बहुत पसंद है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब एक कोट वाले, बूट्स वाले मौसम में आई हूँ। एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन मेलबर्न, और आई थिंक इट्स एन एप्ट फर्स्ट टाइम, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ने

0: मुझे स्वागत किया है यहाँ पे एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रेक दिस आइस विद एन इंडियन फिल्म फेस्टिवल.
1: आपका जो म्यूजिक है इट कवर्स सच ए ब्रॉड रेंज. डूइंग अ बिट ऑफ रिसर्च आई हमारे रेडियो प्रोग्राम में म्यूजिक का सबसे ज्यादा बायस
0: मैं आई हूँ एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन मेलबर्न और आई थिंक इट्स एन एप्ट फर्स्ट टाइम क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ने मुझे स्वागत किया है यहाँ पे एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रेक दिस आइस विद एन इंडियन फिल्म फेस्टिवल.
1: आपका जो म्यूजिक है इट कवर्स सच ए ब्रॉड रेंज. डूइंग अ बिट ऑफ रिसर्च आई हमारे रेडियो प्रोग्राम में म्यूजिक का सबसे ज्यादा बायस मैं

0: सारी क्लासिकल सीखी हूँ, क्लासिकल डांस सीखी हूँ, पर बिकॉज आई एम फ्रॉम कैलकटा और कैलकटा में आर्ट को बहुत इनकरेज किया जाता है. बट मैं जब मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी थी तो मैंने पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान दिया एंड आई एक्चुअली वाज परस्यूइंग डेंटिस्ट्री एंड आई एम अ डेंटिस्ट. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं गाना मतलब एज अ सिंगर प्रोफेशनली बनूंगी. सो इट्स रियली कूल, रियली वियर्ड एंड रियली कूल दैट डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करते करते
1: प्लान बी वर्कड आउट सो दैट द प्लान ए कुड बी वर्कड ऑन.
0: एग्जैक्टली, माय प्लान एक्चुअली वाजंट इवन अ प्लान. It was just a love for the art and a hobby and something I did for myself and it just became a bigger part of my life and plan A ko maine cancel kar diya.
2: But aapki journey start hui Chennai mein, right? Music ke liye. To wo kaise like aap A.R. Rahman ke school mein aap kaise pahunchi?
0: To exactly yahi kahani hai ki main Chennai gayi, main Ramchandra University mein padhai kar rahi thi चेन्नई में डेंटिस्ट्री की और वहीं पे मैंने रहमान सर की स्कूल एक्चुअली म्यूजिक स्कूल आई ज्वाइंड जस्ट फॉर फन बिकॉज एंड दैट टू आई हैड टू ज्वाइन द पार्ट टाइम कोर्स बिकॉज मैं सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. सो आई टू डू दीज इवनिंग क्लासेस इन रहमान सर स्कूल जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मतलब मुझे म्यूजिक को चालू रखना था किसी तरह. तो वो करते करते फिर मैं म्यूजिक में और इन्वॉल्व होती रही. सर के कुछ ऑडिशंस में मैंने हिस्सा लिया फॉर द स्कूल और वहीं से सर ने मेरी आवाज़ सुनी एंड देन ही स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर फिल्म प्रोजेक्ट्स. सो इट्स एक्चुअली रहमान सर हु टेक्निकली डिस्कवर्ड.
2: तो पहला स्टेप रहमान सर के थ्रू आया आपका.
0: जी जी.
2: पर फिर आपने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट किया, बहुत सारी मीन्स प्रीतम दा, बादशाह, गुरु रंधावा. तो वो जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुई?
0: तो रहमान सर के साथ काम किया जब मैं चेन्नई में थी तब मैं थोड़ी थोड़ी शोज करने लगी कॉलेज के साथ साथ. एंड फनी, इसकी भी बहुत फनी कहानी है कि मैं एक दूसरे फ्रेंड जो फिल्मों में गा रहे थे हिंदी में उनको मैं हेल्प कर रही थी मूव करने बॉम्बे. तो मैं बॉम्बे पहुंची एज दिस इज रिटन इन द स्टार्स आई थिंक बिकॉज मैं बॉम्बे पहुंची टू हेल्प अनदर म्यूजिशियन मूव टू बॉम्बे और वो सेटल हो रहे थे. तो मैं मुझे आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से किसी ने प्रीतम दा के स्टूडियो में बात फैलाई कि एक सिंगर है रहमान सर के लिए गाया है. तो वो एक डब्बा लग गया कि ए रहमान के लिए गाया है एंड ऑल म्यूजिक कंपोजर्स आर फैंस ऑफ रहमान सर. सो मुझे बुलाया गया कुछ स्क्रैचेस गाने के लिए प्रीतम दा के स्टूडियो में और वहाँ पे मेरा पहला गाना राबता डब. सो राबता के बाद फिर आपको सब मुझे बुलाने लगे फॉर डिफरेंट. थैंक यू.
2: पर आपको लगता है कि जैसे आपकी जो आवाज अभी है
0: जी
2: शुरुआत से अभी में मतलब कुछ डिफरेंस आया है लाइक आपने गाने का मतलब गाने के स्टाइल में लाइक अपनी आवाज को सुन के कुछ चेंज किया है या कुछ डिस्कवर किया है?
0: आवाज चेंज नहीं किया बट आई थिंक गाने पे डिपेंड करते हैं. कुछ गानों में मैंने अलग स्टाइल में
1: अदाकारी अलग आया.
0: ऑफकोर्स जॉनर पे डिपेंड करते हैं और मैंने बहुत वाइड रेंज गाया लाइक बहुत सोलफुल गाने भी गाए बहुत आइटम टाइप यू नो हिट पार्टी सॉन्ग्स भी गाए तो मेरा और बहुत रैप भी किया है. सो बहुत अलग अलग स्टाइल्स में गाए. एक चीज जो मैंने डेवलप किया है विद टाइम मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन बेटर हो गई. पहले पता नहीं क्यों मैं एक्सेंट में गाती थी बट वो आई थिंक फिल्मों में गाते गाते हिंदी बिकॉज मैं ज्यादा बचपन में इंग्लिश में गाती थी ज्यादातर बिकॉज वो ही मुझे अच्छा लगता था सुनने. सो ऑफकोर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गा के इंडियन लैंग्वेजेस में जो प्रोनाउंसिएशन प्रोफिशिएंसी वो थोड़ा बेटर हुई.
2: क्योंकि आपने चाइनीज में भी गाया है.
0: करेक्ट.
2: How was it?
0: I don't know what I sang and how I sang it.
1: Last one question.
0: जी.
1: आपके फेवरेट सिंगर इंडिया के और बाहर के भी बताइए दोनों बताइए और क्या क्या जॉनरे आपको पसंद है?
0: मेरे आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत टफ है क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनती हूँ. मुझे आवाजें बहुत अच्छी बिकॉज सिंगर्स तो सभी अच्छे आई थिंक एज अ प्रोफिशंसी एज अ स्किल बट मुझे यूनिक आवाजें बहुत पसंद लाइक इंडिया में रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है. एक आर्टिस्ट है इंडियन आर्टिस्ट नहीं है पाकिस्तानी आर्टिस्ट है आबिदा परवीन जी की आवाज़

0: मुझे बचपन से पसंद था. सो आई लव लाइक रियली यूनिक वॉइसेस. वेस्ट में भी बहुत सारे आर्टिस्ट, मैं बहुत अलीशा कीज सुनती थी जब छोटी थी, फिर बहुत जैज एंड ब्लूज भी सुनती थी, लाइक एला फिट्ज़जेरल्ड एंड स्टफ. अभी की के आर्टिस्ट में कहलानी, लाइक आर एन बी आर्टिस्ट बहुत सुनती हूँ.
1: एडेल,
0: एडेल, यस.
1: हम हमारे श्रोताओं के लिए बोल दीजिए, रेडियो गीतांजलि की के श्रोताओं को आपकी तरफ से बेस्ट विशेस.
0: नमस्कार, मैं हूँ निकिता गांधी एंड रेडियो गीता सॉरी नमस्कार मैं हूँ निकिता गांधी और रेडियो गीतांजलि के लिसनर्स को ढेर सारा प्यार.
1: थैंक यू.
2: एक एक लाइन तो बनता है,
0: कौन सा गाऊं जो इजी पड़ेगा. मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, आ मैनू बुर्ज खलीफा.
2: बहुत बहुत धन्यवाद. तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

घड़ी की सुइयां कह रही हैं आपसे इजाजत लेने को। हमारे कार्यक्रम की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है 30 सितंबर को, वेडनेसडे 30 सितंबर को शाम 6:30 बजे तंदूरी जंक्शन कैम्बरवेल में। एक बार फिर से, इंडियन प्रोग्राम AGM फॉर 2026 विल बी हेल्ड एट तंदूरी जंक्शन इन कैम्बरवेल on 30th September at 6:30 p.m. Please, all the members are invited to come and attend.